0: I'm gonna carve on Guzer's eyes. Kepele, let me put our own Shire on the phone line. This was, of course, the tribute to the Shire, the lyricist Niraj, who wrote some interesting lyrics for the songs. And this the song that I just played for you. It was one of my favorite songs written by the one and only Niraj Gopal Das. Of course, it was his name, Gopal Das Saxena. And he wrote some wonderful songs, so and I have a request already, so I'm going to play that those songs for you in the memory of the great Niraj. We don't get too much chance to play the tributes to the lyricists, the Shires. So, and speaking of Shire, let me put the Shire-e-Azam Haq Sahib on the air. And he can talk about Niraj, he can talk about other tributees of the month, he can talk about, I don't know whether he's interested in the World Cup, like we all are, he can talk about that, and he can talk about just about anything in the world, as you know. Hello.
1: Namaskar.
0: Namaskar, namaskar, Haq Sahib, kaise ho aap, janab? चले आओ तो मैं तो अकेला ही हूँ हमेशा आप चले आते हो कि नहीं
1: नहीं मैं तो यार मैं मल्टी डिमेंशन हूँ मैं मैच भी देख रहा हूँ म्यूट करके
0: अच्छा
1: और मैं ह्यूस्टन का एक रेडियो था उनका आया था कि उनको तो उनको भी कॉल करके मैंने अपनी शायरी सुना दी
0: अरे वाह तो सुना दीजिए हमें भी यार हमें
1: आपके आप तो हमारे भाई क्या बोला हमारे गुरु देव हैं
0: हाँ आप तो हमारा शायर देव हैं
1: उस्तादों में से हैं अरे हम लोग तो बंदी करते हैं बस जो मिला बोल दिया
0: हाँ
1: आप तो बहुत मेहनत करते हैं
0: हमें टेक्सास से भी फोन आते हैं हमारे लिसनर्स हैं वहाँ पर
1: कहाँ पे
0: टेक्सास आपने बताया ना
1: हाँ
0: तो वहाँ से फोन आते हैं हमें
1: वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग
0: यस यस
1: हिंदी बोलते हैं उर्दू बोलते
0: हैं हाँ जी जरूर
1: और वो लोग शौक रखते हैं रेडियो का
0: राइट
1: पांच रेडियो स्टेशन है टेक्सास में
0: यस
1: पांच तो हम मतलब वो है जो आई एम बीइंग रेसिस्ट के उर्दू बोलने वालों का
0: राइट
1: तो बहुत सारा खक्का वक्का एक गुजराती का है वो मैं करता हूँ
0: अच्छा
1: टक्कर नाम है क्या है
0: तो
1: कई हैं बहुत सारे हैं वहाँ जो है ना मतलब रेडियो कल्चर है
0: राइट राइट राइट
1: हमारे यहाँ रेडियो कल्चर नहीं है हमारे यहाँ ये कि हम जब प्रोग्राम करते थे तो हमें फोन आता था कि हक साहब किचन में दूध नहीं है दूध लेते आइएगा तो आपका सारा टेम्पो खराब हो जाता
0: है हाँ वो तो सही है तो हमारे लिए आप शायरी ले आओ ऐसा करो
1: के कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप एक गाय खरीद लें दिन भर आप पूजा करें शाम को दूध निकालें
0: अच्छा मैंने एक जोक सुना था गाय इज यूजुअली लाइक रेड इन कलर राइट
1: ब्राउनिश होती जी
0: जी या एंड शी ईट्स ग्रीन ग्रास एंड ग्रीन स्टफ सो द व्हाई इज द काउस मिल्क व्हाइट Just a joke.
1: ये अच्छा सवाल है
0: हाँ
1: हम भी जो खाते हैं हम तो जैसे ढोकला खाते
0: हैं हाँ ढोकला जैसा नहीं आता है ना
1: ढोकला नहीं होता है तो बिल्कुल जलेबी हो जाता है अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था बड़ी अच्छी चीज जो आपको इंटरेस्ट करेगी कि जो इंसान होते हैं ना उनमें बहुत से जानवरों की खसूसियात है
0: हाँ हाँ बात सही है
1: की तरह वो रात को जागता है ठीक है ना शेर की तरह बहादुर बनना चाहता है बीवी के सामने बिल्ली बना रहा लेकिन अच्छा बकरी की तरह वो नरम पड़ जाता है
0: जी जी जी
1: तो कहते हैं कि ये कुत्ते की तरह वफादार क्यों नहीं होता
0: हाँ ये बात सही कही आपने
1: क्यों है फिर भौंकता है उसका फेथफुलनेस नहीं दिया
0: या नो दैट इज ट्रू
1: पढ़ रहा था कि डेल कार्नेगी ने एक बारे एक, एक, एक शख्स के बारे में लिखा कि एक आदमी था, उसके पास गाय भी थी जो दूध देती थी और एक कुत्ता था घर के अंदर जो दूध नहीं देता था, लेकिन मालिक जो था वो गाय हालांकि दूध देती थी उसको इतना प्यार नहीं करता था।
0: अच्छा,
1: कुत्ते से बहुत प्यार करता।
0: हाँ, तो वो तो है।
1: ये थी कि कुत्ता जो है वो अफेक्शन देता था।
0: हाँ।
1: और गाय अफेक्शन नहीं दे पाती है, तो इंसानों के लिए एक मैसेज है।
0: हाँ, बात सही है।
1: अफेक्शन दोगे तो अफेक्शन मिलेगा
0: जी,
1: है ना। लेकिन हम लोग क्या इस चीज कभी, हम लोग तो इतने मशगूल हो गए, इतने बिजी हो गए कि हमें मरने का शौक है और जहर खाने का वक्त नहीं,
0: और पैसे बनाए में बहुत हो गए हैं।
1: बस एकदम रोकड़ा रोकड़ा
0: रोकड़ा लाओ, ढोकड़ा ढोकड़ा खाओ, रोकड़ा लाओ।
1: हमारे प्रमोद जी से बात हुई थी भाई।
0: हाँ हाँ,
1: माशाल्लाह वो बेहतर हो रहे हैं।
0: यस यस यस, एंड आई यूजुअली ही लिसन्स एंड ही कॉल्स एंड आई होप ही इज लिसनिंग, बट टुडे यू नो वी हैव अ कंपटीशन फ्रॉम द वर्ल्ड्स कप, सो
1: लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं जो इसको देख रहे हैं
0: हाँ,
1: वो सुन भी सकते हैं।
0: जी, आई नो, दिस व्हाट आई मेंशन अर्लियर, आई सेड यू नो पुट द सॉन्ग्स ऑन इन योर ईयरफोन एंड वॉच द कप।
1: बिल्कुल, लेकिन हुआ होता क्या है देव साहब कि बहुत से लोग बड़े स्क्रीन के चक्कर में किसी और के यहाँ चले गए।
0: हाँ, और बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही है ना।
1: हाँ, वहाँ समोसा चल रहा है, चाय चल रही है।
0: मुझे भी इनविटेशन मिला था, लेकिन मैंने बोला नहीं, हमारे लिसनर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, एंड
1: थैंक यू। मैं जा रहा था, एक रेस्टोरेंट है, मैंने बुलाया था कि आज चाय मेरी फ्री है आपके लिए, मैंने कहा नहीं, मैं थर्मस में लेके आऊंगा। अब वो उसमें डालते हैं मसाला चाय और ये वो, हम नहीं पीते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो लेकिन उनकी मोहब्बत थी, समोसा वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, उसे वो बनाते हैं और सब। लेकिन मैं जा नहीं सका।
0: नहीं, बस हम आपको देते हैं ना मसालेदार प्रोग्राम। तो अच्छा, ये ऐसा ऐसा करो, आपका फिर
1: जो हैदराबादियों के मसाले की तरह नहीं है।
0: वो कैसे होते हैं?
1: बहुत तेज खाते, तीखा खाते हैं।
0: तीखा तो हम भी खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन गुजराती भी तीखा बहुत
1: नहीं कर सकते। वो जो उनके बघारे बैगन होते हैं ना, और जो दूसरी चीज हलीम, बहुत मिर्ची डालते हैं यार।
0: या
1: बहुत मिर्ची डालते हैं हम लोग, कहते मुसलमान लोग इसीलिए तो लोटा लेते हैं। पानी डालते रहो।
0: पानी डालते रहो, पीते रहो।
1: तो आपके लिए मैं, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब की डेथ एनिवर्सरी नेक्स्ट मंथ को 16th August को है।
0: अच्छा,
1: हम नेक्स्ट मंथ भी पढ़ेंगे।
0: अच्छा अच्छा, डेफिनेटली।
1: एक मशहूर शायरी है जो स्कूल के सिलेबस में भी थी। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक बात मैं बताता चलूँ कि 2003 में ये न्यूयॉर्क में कवि सम्मेलन में आए थे। संजीव वगैरह डायरेक्ट जो है,
0: यस यस,
1: रेडियो के लिए, बीसी रेडियो के लिए
0: ब्रॉडकास्ट
1: कर रहे थे, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट
0: किया। आई रिमेम्बर, यस,
1: मैं उनको सुन रहा था। आई यूज्ड टू लाइक हिम बिकॉज ही वाज कन्वर्सेंट इन हिंदी एंड उर्दू ऑल्सो। और बहुत सारी जो नज़्में हैं वो दिल्ली में एक उर्दू घर है,
0: and he was not a typical, and he was not a typical politician, you know. He was
1: ye to sharif aadmi the yaar.
0: Yeah,
1: ye to bahut sharif aadmi
0: tha. Ha, to politician ki duniya mein
1: lekin aise aadmiyon ki zarurat hoti hai politics.
0: Ha, zarurat to hoti hai lekin hote nahi hai.
1: Dono party, BJP ya Congress,
0: ji
1: sabke he was for the right purpose.
0: Yes. But anyway, yeah, we will think of some songs to play and some kavitas and shairis to read for his tribute next month. We'll do that. This month, of course... Yes, definitely.
1: Daya gaata hoon, daya gaata hoon, toote huye taaron se phoote vaasan tejwar, patthar ki chhati mein ugaaya nava ankur, झरे सब पीले पात, कोयल की कोकरात, प्राची में उड़निमा की रेख देख पाता हूँ। टूटे हुए सपने की, देव जी टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। सिसकी कहते हैं जो साइटिंग होती है, जो उसकी तड़प है।
0: यस यस।
1: टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बिखा
0: अच्छा
1: पर झलकी।
0: क्या
1: हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता लिखाता हूँ।
0: अरे वाह,
1: गीत नया गाता हूँ। जैसे हमारे देव जोशी साहब हमेशा नया प्रोग्राम, नई नई सोच, नए टॉपिक्स लाते हैं। इनको अल्लाह ताला ने दो तीन दिमाग दिया है, हम लोगों तो
0: नहीं। यू नो somebody should do that, you know, like there are a lot of people who do programs but they just play any old thing, and no, we try to remember those melodies and rekindle those memories. So that's my job.
1: Dedication नहीं है ना लोगों में, वो
0: नहीं
1: कहते हैं, तड़प नहीं है।
0: और आजकल इतना competition हो गया।
1: नीरज का आपने अभी बचाया, गोपाल दास नीरज कितने बड़े शायर थे
0: जी,
1: और लेखक थे, लोगों को नहीं मालूम
0: है। Yes, this is why I do this.
1: अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे और इनका जो बहुत सिंपल आदमी थे।
0: Exactly.
1: पे जाते थे
0: राइट
1: अपने यूनिवर्सिटी में
0: राइट
1: और बड़ा कैरेक्टर है। देखिए इनको सबसे पहले इस्तेमाल किया हमारे देवानंद साहब ने, प्रेम पूजा।
0: हाँ राइट राइट राइट राइट
1: ना, लेकिन ये हिडन लाइक द फिल्म वर्ल्ड एक्चुअली।
0: हाँ
1: शायरी करना मजरू साहब को भी पसंद नहीं था, उन्होंने नौशाद को
0: रिप्यूट। दैट्स राइट, दैट इज ट्रू।
1: 45 में
0: यस
1: तब उसको एआर कारदार ने समझाया कि देखो तुमको अपने घर का अगर वो चूल्हा जलाना है तो तुमको ये करना होगा।
0: राइट
1: तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, और हमारे जैसे बिहारी भाई थे, एस एच बिहारी, शमशुल हुदा बिहारी साहब हैं, कैसे वो शायर थे। देखिए वो मोहन बगान के वो फुटबॉलर थे, यूज टू प्ले फॉर मोहन बगान। मोहन बगान इज वन ऑफ द,
0: ओह या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू,
1: फ्रॉम देयर, एंड ही न्यू बंगाली लाइक एनीथिंग। बंगाली लैंग्वेज के मास्टर थे वो।
0: आपको भी, आप भी जानते हैं ना बंगाली थोड़ा थोड़ा।
1: उनको किसी ने एडवाइस किया कि तुम लाहौर कलकत्ता में, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, गो टू बॉम्बे। वही गए, और शर्त फिल्म थी ना सुबोध मुखर्जी की, नहीं ये चांद होगा ना
0: राइट,
1: मगर हम हमेशा तुम्हारे रहे। वो गीत लिखा और वहां से क्लिक किए।
0: yes.
1: तो उनको ओपी नैयर साहब ने बहुत सपोर्ट किया।
0: yes.
1: And he was very loyal to him.
0: Well,
1: शायरों के बारे में आप सही कह रहे हैं।
0: yes.
1: ये लिखे पढ़े लोगों के बारे में जिसमें आपके पिताजी भी हैं,
0: right,
1: बातें
0: right.
1: करनी चाहिए हम लोगों को, इससे हमारा जो ज्ञान बढ़ता है। उन लोगों का ज्ञान तो अपनी जगह पे है, हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: आप भी हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। सो
1: आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया भाई,
0: आपका शुक्रिया, ज़्यादा ज़्यादा शुक्रिया आपका, बिकॉज यू ऑलवेज कम अप विद सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड
1: नहीं मैं, देखिए मैं जब कॉल करता हूँ मैं बहुत खुशी से करता हूँ।
0: यस यस,
1: पैशन है मेरा।
0: यस, मेरा भी पैशन है। तो
1: वेरी स्मॉल, आई फील बिग।
0: एंड यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल से व्हाई यू गिव सो मच टाइम टू हक साहब। आई सेड लिसन, ही टेक्स द टाइम एंड it, you should be proud that he takes the time for you and for us. So I always defend you because I enjoy your company, I enjoy your contribution to the sure oh yeah, you know, I get a lot of criticisms too, but you know, you have to be
1: एक मुंह से आदमी अच्छी बात भी करता है, बुरी बात भी करता है। कान दोनों होते हैं, उससे आदमी अच्छी बात सुनता है, बुरी बात भी सुनता है, मुंह से निकाल देता है सुन के।
0: yeah. है ना, एंड बुरी बातें वो याद करता है ज्यादा।
1: हाँ
0: सो ये
1: प्रार्थना है। ये देखिए आजकल की सोसाइटी में आप देखें हमारे तैयब भाई बेचारे।
0: हाउ इज ही डूइंग बाय द वे, हाउ इज ही डूइंग?
1: अल्जाइमर के चक्कर में चले गए, लॉस ऑफ मेमोरी कंप्लीट। तो
0: दुआ
1: करते हैं कि हम और आप जो हमारे
0: yes, yes, yes.
1: उनका मेमोरी, देखिए हमारे प्रमोद भाई का मेमोरी बहुत सलामत है।
0: yes, yes, yes.
1: है ना, बहुत। उनको मैं दुआ करता हूँ कि वो वॉकर पे और पैर पे जल्दी से खड़े हो जाएं।
0: जी जी जी,
1: और चलने लगे और yeah. अपना काम कर ले।
0: यस यस यस यस, थैंक यू सो मच हक साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई अप्रिशिएट। I appreciate you taking the time out to give
1: you
0: us some...
1: record it. I must know what I am saying.
0: I don't record anything anymore. They are doing that, but you know, they don't offer me unless I ask. I mean, there are people who really, especially in different states, they yes. Oh yeah, yeah. India mein karte hain. India mein karte hain. Kyunki India mein to hamara program aata hai raat ko. So they yeah, so they record it and then listen the next day, you know.
1: Or through the app, bahut acha aata hai.
0: Yes, yes. So anyway, Haq Sahab, it's always a pleasure. Thank you so much, and keep in touch on the email circuit. And
1: studio aaye hain, ye bahut badi baat hai.
0: Yeah, yeah, yeah. Aa jaiye fir se, aa jaiye hamare studio mein.
1: Aayenge yaar, zarur aayenge.
0: Okay.
1: Bulaya. तुमने बुलाया और
0: चले आए, चले आओ, चले आओ, चले आओ. तो ये गाना बहुत अच्छा है, खिलते हैं गुल यहाँ,
1: क्या बात,
0: नीरज साहब का लिखा हुआ है,
1: आनंद बख्शी, कौन
0: सा, yeah, so I'm gonna play that.
1: Okay, thank you very much.
0: Thank you for your call.

करो थोड़ो थोड़ो लटकोने आकड़ीनो मटको थोड़ो थोड़ो करो थोड़ो थोड़ो लटकोने आकड़ीनो मटको।